0: स्कोर कार्ड रेडियो हो।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी।

हजुर चाँदी जलप सुन्यो निकै नै रमाइलो गीत अन्जु पन्त र एसडी योगीको आवाजमा। हजुर हामी छौ नौलो किरणको बसाईमा र अहिलेको लागि पालो बाइक छ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कद्वारा तोकिएको खुल्ला बजार वैदेशिक विनिमय दर साझा गर्ने। युएस डलर एकको खरिदर 153 रुपियाँ 1 पैसा, बिक्री दर 153 रुपियाँ 61 पैसा। युरोपियन युरो एकको खरिदर 174 रुपियाँ 32 पैसा, बिक्री दर 175 रुपियाँ। युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर 202 रुपियाँ 64 पैसा, बिक्री दर 203 रुपियाँ 43 पैसा। स्विस फ्रान्क एकको खरिदर 184 रुपियाँ 46 पैसा, बिक्री दर 185 रुपियाँ 18 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर 107 रुपियाँ 55 पैसा, बिक्री दर 107 रुपियाँ 97 पैसा। कैनेडियन डलर एकको खरिदर 108 रुपियाँ 18 पैसा, बिक्री दर 108 रुपियाँ 60 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर 109 रुपियाँ 73 पैसा, बिक्री दर 120 रुपियाँ 20 पैसा। जापानिज येन 10 को खरिदर 9 रुपियाँ 68 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 72 पैसा। चाइनिज युआन एकको खरिदर 22 रुपियाँ 79 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 88 पैसा। सऊदी अरबियन रियाल एकको खरिदर 40 रुपियाँ 75 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 91 पैसा। कतारी रियाल एकको खरिदर 42 रुपियाँ, बिक्री दर 42 रुपियाँ 16 पैसा। थाई भाट एकको खरिदर 4 रुपियाँ 59 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 60 पैसा।